0: Hi, this is Ajay Oberoi from GTA Credit. पिछले 18 साल विच GTA Credit दी मदद नाल 20,000 तो विवाद फैमिलीज ने बिना बैंकरप्सी किते हुए अपने कर्जा तो छुटकारा पाया है। चाहे बिजनेस दे कर्जे होन या पर्सनल या CRA दे टैक्सेस, सारे कर्जे दी एक छोटी जही मंथली किश्त बनाओ। कॉल अजय या नदीम नो 416-650-5800 और GTA Credit.com।
1: सोच दी सी असी

0: वाजबी 2.5% ब्याज पूरे साल का। कोर्सेज ऑनलाइन ने, इजी ने, सिर्फ इजी ने, सिर्फ फुली फुली ऑनलाइन, फोन पे लैपटॉप पे आप क्लास लगाते हैं, एग्जाम्स है नहीं, आसान से असाइनमेंट्स हैं, कुछ कोर्सेज में टीचर ही नहीं है, सेल्फ स्टडी मॉडल पे है, बिजनेस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, कोर्स हासिल करें, सर्टिफिकेट हासिल करें, गवर्नमेंट से फंडिंग 1.5 लाख, 1,17,000 डॉलर तक हासिल अपने अकाउंट में डायरेक्ट करें।
1: ते जी गल करिए कोर्सेज किन्ने के ने टोटल ऑल ओवर सारे मिला के किन्ने के कोर्सेज होंगे ऑप्शन?
0: हाँ जी, हाँ जी, हम उन्हीं कोर्सेज में डील करते हैं जिनमें हम टचवुड हमारा हाथ है, इतने टाइम से हम काम कर रहे हैं
1: जी,
0: कि हमें मतलब हीट ना आए, है ना। तो 8 से 10 कोर्सेज हैं, रखने को तो हम 80-100 रख सकते हैं
1: जी जी जी,
0: बट हम 8 से 10 ही रखते हैं जिसमें आप आराम से पास होते हैं। हॉस्पिटैलिटी का भी कोर्स है हमारे पास, अकाउंटिंग तो मैंने बताई दिया, ऊपर से आप मान के चलिए कुछ एक्यूपेंचर का एक प्रोग्राम है,
1: मतलब हाई डिमांड है जी जी जी।
0: हाँ जी बिल्कुल डिमांड है, और अगर आप आपको पढ़ना है हमारे पास PSW, ECA ये वाले कोर्सेज भी, जो कि वो भी गवर्नमेंट सपोर्टेड है, उसमें फंडिंग आती है लेकिन कम आती है।
1: अच्छा, पर डील अपन जरूर करते हैं,
0: बिल्कुल जी डील करते हैं, HVAC का प्रोग्राम भी हमारे पास। तो
1: वेरी नाइस, बिल्कुल एटलीस्ट सानू पता होवे ना, ते फिर आ बड़े हाई डिमांड कोर्सेज ने, PSW की गल कर ली, HVAC की गल कर ली, होर अकाउंटिंग सब तो ज्यादा है ना, ते जरूर ते दे ले ही आपां एक चीज होर पुछनी चाहवांगे, दे विच कोई एज लिमिट भी होंदी है किसी इंसान दी या किवें?
0: ना ना ना, नो एज लिमिट, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एज पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इस देश में चार्टर ऑफ राइट फ्रीडम है, PR है, सिटीजन है, प्रोटेक्टेड पर्सन है, ओंटारियो में कहीं भी रहते हैं आप एलिजिबल है। कॉल आप हमें अभी मिस कॉल या व्हाट्सएप छोड़ दे, कल आपको हमारे स्टाफ से कॉल आ जाएगा। हमारा ऑफिस 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड हर एंटारी डेरी पे है, 6 बंदे आपके लिए काम कर रहे हैं
1: जी,
0: बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं, फंडिंग के नाम से हमें डर लगता है, डरिए मत, साफ काम है, साफ तरीके से कर रहे हैं, बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं।
1: वेरी नाइस, ये देखो जो आप काम करते हैं ना वधिया जेनुअन, फिर साढ़े विच अपने आप कॉन्फिडेंस आता है भी ये चीज वाकई ही सारी रियल है। जाओ ऑफिस चैक करो, 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड कॉल करके अपॉइंटमेंट सैट करके, या कॉल करो भी असं आ रहे हैं, तो जाके देखो जेनुअन चीजा ने, तो कोई भी गलबात पूछनी है करनी है, बहुत सारे साढ़े क्वेश्चन होणगे, तो जरूर तुसी 437-264-3175 अपने कोल नंबर सेव जरूर रखो, कदे भी सानू लोड़ पवे, कदे भी साड़ा मन बने, तो असी कहांगे जिन्ना छेती हो सके उन्ना वधिया है, क्योंकि जिहड़े कोर्सेस पहला कर गए है जिन्हां दा कोर्स खत्म होने वाला है वह दोबारा फिर कर सकते हैं कि नहीं सारांश?
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, सेकेंड कोर्स करने के लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर पहले वाले एजेंट ने परसेंटेज लिया।
1: अच्छा?
0: इतना लिया
1: टिम
0: हॉर्टन में मिला कोट पैंट पहन के हमें, हम कहते हैं कि वो खुद ही जान जाते हैं, हमारी फीस काम होने के बाद $199 फ्लैट फीस है, नंबर वन। नंबर टू प्रॉपर ऑफिस है, 1,000 स्क्वायर फीट का, हाई क्लास जगह पे है, बहुत टाइम से है
1: जी,
0: कोई चलाकी नहीं है, जिसका अड्डा होता है वही चीटिंग नहीं करता। तो आप हमारे ऑफिस आए, हमें कॉल करें, कोई भी चलाकी, मीठी बातें, सेटिंग या कुछ कमीशन नहीं है, साफ काम है, 1.5 लाख, 1,17,000 तक हासिल करें, कॉल करें। फैमिली साइज ज्यादा है तो ही आपको इतने पैसे आएंगे, अगर फैमिली साइज कम है, मैरिड है आप, ये मैरिड विद वन किड है, तो 1,25,000 तक आता है, तो कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आए, नंबर नोट करें, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175, नंबर एक और बार, 437-264-3175।
1: वेरी नाइस, बिल्कुल जी, 437-264-3175, 437-264-3175 ते कॉल करो, कैरियर अपना चेंज करो, वधिया वधिया कोर्स करो, लोन दे रूप दे, फंडिंग दे रूप दे विच अमाउंट लो, ते अपनी जिंदगी नू होर भी स्किल्ड ते बेहतर बनाओ, ते यूनी ग्लोबल दे सारांश जी नू कॉल करो, 437-264-3175, 4372643175। सारांश जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, हैप्पी वीकेंड, थैंक यू जी। क्या बात है, कॉल होल्ड ते ने, पहला आपां कॉल लै लईए जी। हरमनप्रीत जी सत श्री अकाल।
2: ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ
1: ਜੀ ਜੀ,
2: ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਈਸ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪਾਈਸ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਲੇ?
1: ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਤੰਦੂਰੀ ਬੋਇਜ਼ ਜੀ।
2: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ
1: ਜੀ,
2: ਅਜੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ।
1: ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੀ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟੋਪਿਕ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਹੈਨਾ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਬ ਬੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜੇ?
2: ਮੈਂ ਓਦਾਂ ਵੈਸੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਆਇਆ ਸਿੱਧਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
1: ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ
2: ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
1: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। 4133 ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
3: ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਆ
1: ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ।
3: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ ਨਾ,
1: ਹਾਂਜੀ
3: ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਘਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ।
1: ਅੱਛਾ
3: ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਸਾਂ ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸਟੋਪ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ
1: ਜੀ,
3: ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਲਾਇਨ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਬਲੂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਲੈਂਡ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਖਣ ਯੋਗ।
1: ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੀਲਾ ਪਰਬਤ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲਾ ਪਰਬਤ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲੂ ਮਾਊਂਟੇਨ।
3: ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ
1: ਜੀ
3: ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ
1: ਜੀ,
3: ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੋਪ ਸਾਈਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਟੋਟਾ ਕੋਟ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ, ਟੋਟਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਚ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ।
1: ਚਮਤਕਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨੀ ਆਈ, ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
3: ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
1: ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ
3: ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ,
1: ਧੰਨਵਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਨੀ ਖਾਧੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦਿਨੇ ਪੈਂਦਾ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਕੌੜੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਏਗਾ, ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਿਆਂ ਦੇ ਤਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਿਆਂ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ।

ऑडियंस पार्टनर में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, आपकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400 का कॉल कीजिए 9054567233। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

0: Giovanni, sempre nel cuore con il suo Dio, sempre nel cuore con il suo Dio,
1: अगर आप सोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट. ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे. कहां पे? योगीज ऑटो सेंटर. तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं. अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगी ऑटो सेंटर के हैरी को. हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-6464. योगी ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है. आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है. तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगी ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट.

0: कुलाराध्या कुलेश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजया कुलंबा कुल रक्षिणी वेद माता जगन माता लोक माता हितैषिणी आदिशक्ति समुद्भूता क्या ही संपूर्ण जगत विश्वबंधम महाघोरम त्राही मां शरणागतम त्रैलोक्य हृदयम शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता त्राहि मां शरणागतम चिदग्रीमंडल संभूता राज्य वैभवकारिणी प्रकटीतां सुरेशानी वंदे त्वं राज गौरवम् त्वदीये कुले जात है त्वामेव शरणं गत है त्वत्वत्सलोऽहं बाध्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मंगलानुशासनम् कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृति पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मगेहिनी श्री कुलदेवी स्तोत्रम् श्री कुलदेव्याचरण अर्पणम् अस्तु
1: सारे गामा का

exam, eyeglasses, contact lenses, sunglasses, safety glasses. So ये भी चाहिए आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400 स्पीटर्स का टीपी पर कॉल कीजिए 905-456-7733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस।

0: अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं, हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट. ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे. कहां पे? योगीज ऑटो सेंटर. तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं. अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को. हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-4 905-547-6464. योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है. आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है. तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट.
1: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है. सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद. अब आपके लिए ये जो वीकेंड है, मौसम बहुत अच्छा है, तो आपके लिए अभी बच्चे आपके स्कूल चले गए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत सारी बधाई हो. जिनके बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे पहली बारी गए हैं स्कूल, उनको भी बहुत सारी बधाई हो. तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार, मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा. तो अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर कुछ भी लेके आना चाहते हो, और जहाँ फिर आपने अपने घर में बढ़िया टीवी लेके आना है, किचन की गैजेट लेटेस्ट चाहिए, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स. टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा उनके पास उनकी स्पेशल देखिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर. और उनकी एक लोकेशन इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है ब्रैम्पटन में, दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में. तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखो, फिर उनके ऑर्डर बुक करने के लिए आप 905-799-0045 पर कॉल कीजिए 905-799-0045. अब हमारे लिए जो महाउत्सव सीजन है वो शुरू हो गया है, क्योंकि 13 सितंबर से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है. तो आपको कोई भी पूजा का सामान लेना है तो इंडिया सजावट एंड पूजा हट आपके लिए मैलनी ड्राइव पे मौजूद है ब्रैम्पटन में. अब हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो, तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप. इत्थे ही हैमिल्टन विच साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5000 तों लैके 1,00,000 डॉलर तक. ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% ते शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन. जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी. ते जे तुहानू नवे टायर दी लोड़ है तां ओह वी मिलणगे, 4 टायर दा सैट सिर्फ 299 तों शुरू. हुण सुणो, AM 530 लिसनर लई खास ऑफर, जदों तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन आओ, सानू सिर्फ ए दसो मैं AM 530 ते मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते 500 दी सिद्धी बचत. तां फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो बीवीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन. कॉल करो 362-384-3840, दोबारा सुनो 365-384-3840, 362-384-3840, बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स. जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में. तो अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स को कॉल कीजिए, कनाडा भर में आपको मूव होने में मदद करते हैं. तो आप एक बार उनको कॉल कीजिए 416-524-804 416-524-6704. तो HK मूवर्स. अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है किचन वाटरलू में, तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खेंड 519-546-1265-19 546-1260 पर आप उनको कॉल कर सकते हो। तो अगर आपने किसी किस्म की भी आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। जी हाँ, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको बहुत बढ़िया सामान बढ़िया प्राइस पे मिलता है। इंटरमॉडलैंड एयरपोर्ट रोड पे उनकी एक लोकेशन है। दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए गोल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक डॉट कॉम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिए और फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिएगा। 905-799-0045 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं ऑर्डर बुक करने के लिए। 905-799-0045। या तो आप सुन रहे प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना मैं सुनाना चाहती हूँ। तो लेट्स प्ले सम नाइस म्यूजिक। मैं सोच रही हूँ पंजाबी का गाना सुनाया जाए जहाँ के फिर आपको हिंदी का गाना सुनाया जाए, क्योंकि पंजाबी के गाने हम

0: बहुत सारी जो
1: नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
2: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलिनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-940।
0: जी हाँ, तो बात हो रही थी कि गणेश उत्सव, गणेश उत्सव के लिए सभी मंदिरों में बहुत बढ़िया बढ़िया गणेश जी का पूजा, हर रोज पूजा की जाती है। और फिर गणेश विसर्जन के लिए राम मंदिर वाले बहुत बढ़िया बोट क्रूज कर रहे हैं। अगर आपको जाना है तो पहले पहले बुकिंग कर लीजिएगा, उनको कॉल कीजिएगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से, लीजिए सुनिए पंजाबी कर।

साधु, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो ये एक रेयर सॉन्ग मैंने आपके लिए प्ले किया, उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो आगे भी हम आपके बहुत प्यारा आपके लिए गीत सुनाऊंगी। तो अब आपके लिए बहुत ही अच्छा सा एक और गाना मैंने चुना है, अब सुनाती हूँ अभी भी आपके लिए, जरूर सुना।

करती हूँ। तो पहले आपको हमारे जो स्पॉन्सर के मैसेज हैं, अगर आपने मूव होना है तो आप HK मूवर्स को कॉल कीजिए। कनाडा भर में मूव होने के लिए आपकी पूरी मदद करते हैं। दो 416-524-8004-416-524-6704 HK मूवर्स।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। उम्मीद रख रही हूँ कि जो गाने मुझे पसंद है मैं प्ले कर रही हूँ, तो उम्मीद रख रही हूँ कि आपको भी ये गाने पसंद होंगे, उम्मीद रख रही हूँ। और अगर आपको पसंद आ रहा है प्रोग्राम तो आप जरूर मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो। और जो भाई बहन हमें बताते हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकली फाटो हैमिल्टन। तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तों लैके $1,00,000 तक। ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.4% तो शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानूं नवें टायर्स दी लोड़ है तां ओह वी मिलणगे। 4 टायर्स दा सैट सिर्फ 299 तों शुरू। हुण सुणो, AM530 लिसनर लई खास ऑफर। जदों तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ आटो हैमिल्टन आओ, सानू सिर्फ ये दसो मैं AM530 दे मीरा शर्मा तों तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानूं मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 दी सीधी बचत। तां फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकक्लिफ आटो हैमिल्टन। कॉल करो 365-384-3840। दोबारा सुनो 365-384-3840। बीबीटी रॉकक्लिफ आटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए अब आपको एक और पंजाबी का गीत सुनाती हूँ, बहुत ही प्यारा सा गीत है। सो 13 से 19 सितंबर तक गणेश उत्सव चल रहा है, आपको बता दें।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये मैंने आपको सुनाया है क्योंकि इसके गाने के बहुत सारी अलग अलग वर्जन बाद में आ गए, लेकिन असली जो गाना है वो यही है जो आपने आज तो ये पुरानी फिल्म का गाना है, पुरानी फिल्म ही उसका ये गाना है पंजाबी का, और बहुत ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने का है। तो ये पंजाबी गाना अपने ओरिजिनल वर्जन आप सुना है, और ये फिल्म थी बड़ी पुरानी फिल्म थी, भी नाम उसका जक्के वाली फिल्म का नाम था। तो कभी आपको मौका मिले तो जरूर देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। उसमें आपको देखने का मिलेगा कॉस्ट्यूम कैसे थे, फिर उनकी जो बैकग्राउंड कैसे कैसे सेट की गई हैं, कमाल की फोटोग्राफी कैसे की होगी उन्होंने, लाइट्स लगी हुई हैं, तो बहुत कुछ आपको जैसे सोचने को मिलेगा कि ये उस जमाने में उन्होंने कैसा किया होगा। 60s की मेरे ख्याल ये फिल्म है। तो आइए प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज हो, वाशर ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, बढ़िया टीवी लेके आना चाहते हो, बढ़िया किचन की गैजेट्स आपको चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी स्पेशल्स देख सकते हो। अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, तो फेस्टिव सीजन में आपको अपने घर में बढ़िया बढ़िया चीजें लेके आनी है। खास करके गणेश उत्सव शुरू हो गया, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाके और फिर अपने ऑर्डर कर लीजिए 905-799-0045-905-799-0045। अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सवादा भला, हैव अ वंडरफुल वीकेंड, एंजॉय व्हाइल यू कैन। स्नो से पहले पहले आपके लिए बढ़िया मौसम अभी चला हुआ है, तो समर का एंजॉयमेंट अभी भी चल रहा है, समर चल रही है अभी भी, तो आप एंजॉय कीजिएगा। पूरी होस्ट मेरा कर सकते हो 6.7640। और अगर आपको प्रोग्राम भी पसंद आ रहा है तो आप जरूर हमें कॉल कर सकते हो 6477737640। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से।

Williams Parkway में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, आपके स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5333 कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

0: Everybody, sinpen ko sinpon sukdiyo, chapren ko panu badtiyo, kat kat ke antar ki chaat pane pure ki tirat chaat chidi ke punchares pula, sabar ki paadhi kar pula, santan dukh paaye te dukhi, sukh paaye saath te sukhi.
1: अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर आप अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट. ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे. कहां पे? योगीज ऑटो सेंटर. तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं. अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को. हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-4 905-547-6464. योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है. आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है. तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट.

श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देव

सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः ॐ ज्ञानी नाम विजेता पार्वती बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि गात्वदन्या सर्वोपकार

0: अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर आप अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट. ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे. कहां पे? योगीज ऑटो सेंटर. तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं. अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को. हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-4444 905-547-6464. योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है. आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है. तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट.
1: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है. सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद. अब आपके लिए ये जो वीकेंड है, मौसम बहुत अच्छा है, तो आपके लिए अभी बच्चे आपके स्कूल चले गए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत सारी बधाई हो. जिनके बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे पहली बारी गए हैं स्कूल, उनको भी बहुत सारी बधाई हो. तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार, मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा. तो अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर कुछ भी लेके आना चाहते हो, और जहाँ फिर आपने अपने घर में बढ़िया टीवी लेके आना है, किचन की गैजेट लेटेस्ट चाहिए, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स. टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा उनके पास उनकी स्पेशल देखिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर. और उनकी एक लोकेशन इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है ब्रैम्पटन में, दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में. तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखो, फिर उनके ऑर्डर बुक करने के लिए आप 905-749-0045 पर कॉल कीजिए 905-799-0045. अब हमारे लिए जो महाउत्सव सीजन है वो शुरू हो गया है, क्योंकि 13 सितंबर से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है. तो आपको कोई भी पूजा का सामान लेना है तो इंडिया सजावट एंड पूजा हट आपके लिए मैलनी ड्राइव पे मौजूद है ब्रैम्पटन में. अब हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लब रहे हो, तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप. इथे ही हैमिल्टन विच साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5000 तों लैके 1,00,000 डॉलर तक. ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% ते शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन. जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अते डील लब्भण लई पूरी कोशिश करेगी. ते जे तुहानूं नवें टायर दी लोड़ है तां ओह वी मिलणगे, 4 टायर दा सैट सिर्फ 299 तों शुरू. ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM5 ਕੰਟਰੀ ਲਿਸਨਰ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ 500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ. ਕਾਲ ਕਰੋ 362-384-3840, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3840, 362-384-3840. ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ. ਜੀ ਹਾਂ, ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਮੇ. ਤੋ ਅਬ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੋ HK ਮੂਵਰਸ ਕੋ ਕਾਲ ਕੀਜੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਮੇ ਆਪਕੋ ਮੂਵ ਹੋਣੇ ਮੇ ਮਦਦ ਕਰਤੇ ਹੈ. तो आप एक बार उनको कॉल कीजिए 416-524-804 416-524-6704. तो HK मूवर्स. अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है किचन में, वाटरलू में, तो आप जाइएगा आप कॉल कीजिएगा रिसीव फ्रेंड 519-500 शैली 1200 5465461260 पर आप उनको कॉल कर सकते हो। तो अगर आपने किसी किस्म की भी आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। जी हाँ, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको बहुत बढ़िया सामान बढ़िया प्राइस पे मिलता है। इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे उनकी एक लोकेशन है, दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए वॉल्फ में है। तो topchoiceelectronic.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिए और फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिएगा 905-799-0045 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045। या तो आप सुन रहे प्रोग्राम घर से निकाल। तो अब आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना मैं सुनाना चाहती हूँ। तो लेट्स प्ले सम नाइस म्यूजिक। मैं सोच रही हूँ पंजाबी का गाना सुनाया जाए जहाँ के फिर आपको हिंदी का गाना सुनाया जाए, क्योंकि पंजाबी के गाने हम सुनाना चाह रहे थे। तो कोशिश थी कि पंजाबी का गाना आपको सुनाया जाए। जी हाँ, तो बढ़िया सा गीत आपके लिए चुनना चाहती हूँ। तो आपका वीकेंड कैसा जा रहा है? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि अभी क्या है कि जल्दी ही जैसे श्राद्ध शुरू हो जाते हैं और फिर बाद में उसके नवरात्रे भी आ जाएंगे आपके लिए। तो इसलिए फिर आपके लिए अभी जो जो गणेश उत्सव है वो 13 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो आप 13 से 19 तक, तो फिर बहुत जगह गणेश उत्सव के लिए फिर बहुत सारी जो
2: यहाँ से आपको थाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात सिदोरी तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 13 Allini Drive, Unit 9 and 10 ब्रैम्पटन, टेलीफोन 905-799-940।
1: जी हाँ, तो बात हो रही थी कि गणेश उत्सव के लिए सभी मंदिरों में बहुत बढ़िया पूजा हर रोज पूजा की जाती है। और फिर गणेश विसर्जन के लिए राम मंदिर वाले बहुत बढ़िया बोट क्रूज कर रहे हैं। अगर आपको जाना है तो पहले बुकिंग कर लीजिएगा, उनको कॉल कीजिएगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से, ठीक है? सुनिए जो पंजाबी कर दिया।

बहुत प्यारा आपके लिए गीत सुनाऊंगी। तो अब आपके लिए बहुत ही अच्छा सा एक और गाना मैंने चुना है, अब सुनाती हूँ, अभी भी आपके लिए जरूर सुनाती हूँ। तो पहले आपको हमारे जो स्पॉन्सर के मैसेज हैं, अगर आपने मूव होना है तो आप एच के मूवर्स को कॉल कीजिए। कनाडा भर में मूव होने के लिए आपकी पूरी मदद करते हैं। 2416-524-8400-4416-524-6700 और एच के मूवर्स।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट डॉलर 5 हर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बम रोड ईटोबीको मेरी जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1150
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो लेट्स गो टू दिस वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग लता जी का गाया हुआ 60s में।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। उम्मीद रख रही हूँ कि जो गाने मुझे पसंद है मैं प्ले कर रही हूँ, तो उम्मीद रख रही हूँ कि आपको भी ये गाने पसंद होंगे, उम्मीद रख रही हूँ। और अगर आपको पसंद आ रहा है प्रोग्राम तो आप जरूर मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो। और जो भाई बहन हमें बताते हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो हमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकली फाटो हमिल्टन। तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तों लैके $1,00,000 तक। ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तो साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानूं नवें टायर दी लोड है तां ओह वी मिलणगे। 4 टायर दा सैट सिर्फ 299 तों शुरू। हुण सुणो AM530 लिसनर लई खास ऑफर, जदों तुसी बीबीटी रॉकलिफ आटो हमिल्टन आओ सानू सिर्फ ये दसो मैं AM530 दे मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 दी सीधी बचत, तां फिर देर किस गल दी। अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकलिफ आटो हमिल्टन, कॉल करो 365-384-3340। दोबारा सुनो 3653-84-3840। बीबीटी रॉकक्लिफ आटो हमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए अब आपको एक और पंजाबी का गीत सुनाती हूँ, बहुत ही प्यारा सा गीत है। सो 13 से 19 सितंबर तक गणेश उत्सव चल रहा है, आपको बता दें।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये तो मैंने आपको सुनाया है क्योंकि इसके गाने के बहुत सारी अलग अलग वर्जन बाद में आ गए, लेकिन असली जो गाना है वो यही है जो आपने आज तो ये पुरानी फिल्म का गाना है, पुरानी फिल्म ही उसका ये गाना है पंजाबी का, और बहुत ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने का है। तो ये पंजाबी गाना आपने ओरिजिनल वर्जन आप सुना है, और ये फिल्म थी बड़ी पुरानी फिल्म थी, भी नाम उसका जक्के वाली फिल्म का नाम था। तो कभी आपको मौका मिले तो जरूर देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। उसमें आपको देखने का मिलेगा कॉस्ट्यूम कैसे थे, फिर उनकी जो बैकग्राउंड कैसे कैसे सेट की गई हैं, कमाल की फोटोग्राफी कैसे की होगी उन्होंने, लाइट्स लगी हुई हैं, तो बहुत कुछ आपको जैसे सोचने को मिलेगा कि ये उस जमाने में उन्होंने कैसा किया होगा। 60s की मेरे ख्याल ये फिल्म है। तो आइए प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज और वॉशर ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, बढ़िया टीवी लेके आना चाहते हो, बढ़िया किचन की गैजेट्स आपको चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्स में है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी स्पेशल्स देख सकते हो। अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, तो फेस्टिव सीजन में आपको अपने घर में बढ़िया बढ़िया चीजें लेके आनी है। खास करके गणेश उत्सव शुरू हो गया, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाके और फिर अपने ऑर्डर कर लीजिए 905-799-0045-905-799-0045। अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सवादा भला, हैव अ वंडरफुल वीकेंड, एंजॉय व्हाइल यू कैन। स्नो से पहले पहले आपके लिए बढ़िया मौसम अभी चला हुआ है, तो समर का एंजॉयमेंट अभी भी चल रहा है, समर चल रही है अभी भी, तो आप एंजॉय कीजिएगा। पूरी होस्ट मेरा कर सकते हो 617640। और अगर आपको प्रोग्राम भी पसंद आ रहा है तो आप जरूर हमें कॉल कर सकते हो 647-773-7640। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

0: 24 घंटे 7 दिन खुला सब्जी मार्केट रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर दो लोकेशंस तो सर्व कर रहे ने सैंडलवुड एंड मैकलॉगलिन 10 लोरमेल गेट या पहुंचो 10970 ब्रैमली रोड वेज एंड नॉन वेज बिरयानी बाय वन गेट वन फ्री चना पटूरा बाय वन गेट वन फ्री फिश पकौड़ा बाय वन गेट वन फ्री तंदूरी चिकन लेग बाय वन गेट वन फ्री मैंगो लस्सी सॉल्ट लस्सी मिठी लस्सी बाय वन गेट वन फ्री हर रोज फ्रेश साग ते मक्की दी रोटी टिफिन सर्विस पिकअप अते डिलीवरी दे लई वी अवेलेबल है दोनों लोकेशंस ते फ्रेश सब्जियां फ्रूट ते ग्रोसरी दे आइटम ते हुण आलू गोभी मूली ते प्याज आले परौंठे 299 दे विच अमृतसरी कुलचा विद चना 799 ते पनीर एंड मिक्स परौंठा 399 सब्जी मार्केट ओपन 24/7
1: ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਲ ਬੰਸਰਾ ਡਾਂਸ
2: ਟੋਰਾਂਟੋ ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੀਅਲਟਰ ਰਵ ਸਿੰਘ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਏ ਟੂ ਜ਼ੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਐਂਡ ਰੀਅਲਟਰ ਹਰਪ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਹੰਸ

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callon to chutkara. Bina vyaj nikkiya nikkiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर, तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com। Helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974000188 बार 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974008 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।
3: नजरिया प्रोग्राम नाल जुड़ चुके दोस्तों का हार्दिक ते निघा स्वागत। उम्मीद करदा कि बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। जिहड़े दोस्त साडे नाल हुणे जुड़े ने, हुणे ट्यून इन कीता जी, उन्हां नूं निघी जी आखदे क्योंकि अपना एतवार वाले दिन 12 बजे रामस पंजाबी वीकेंड शो दे नाल अपना साथ बन जांदा है। 12 तों 1 रामस पंजाबी ते 1 तों 2 सुणदे प्रोग्राम नजरिया। 2 घंटे दे साथ दे दौरान अगर तुसीं स्टूडियो च कॉल कदी भी करनी होवे ते 416-233-7368 जां 8297 टैलीफोन नंबर हुंदे ने, इन्हां नंबर से कॉल कीती जा सकदी है। जां तुसीं मैनूं प्रोग्राम तो बाद दे विच 2 बजे तो बाद 416-678-1379 ते कॉल कर सकदे हो। विद इन द प्रोग्राम तुसीं टैक्सट भी कर सकदे हो इसे नंबर ते 416-669-1379 टैलीफोन नंबर मेरा सैल नंबर है जी। मैं थोड़ा होस्ट मनजीत सिंह गिल और थानू एक बारी फिर तो निघी जी हाँ जी अज के नज़रिया प्रोग्राम के दौरान। और साड़ी ये गलबात जिहड़ी आ तुहाडे तक पहुँचाउण दे विच मदद सानू हमेशा ही ऑप्टिकल वन दे वलों हुंदी है। 905-455-0752 उन्हां दा टैलीफोन नंबर है। पंजाबी बाय नेचर 416-937-2061 ते तुसीं उन्हां नाल गल कर सकदे हो। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200 ते गल कीती जा सकदी है। ट्राई सिटी प्रोफेशनल रियल्टी तो अवतार सिंह जी बडयाल 416-464-2067 ते तुसीं उन्हां नाल गल कर सकदे हो। किंग टोइंग 416-677-2222 ते संपर्क कीता जा सकदा है। ते प्रीमियम आटो रिपेयर्स एंड यूज कार सेल्स तो गुरप्रीत ढाडा जी सहयोग करते हैं। 416-747-6800 उन्हां दा टैलीफोन नंबर है। गिल स्वीट फैक्टरी 905-799-2616 हैड ऑफिस का नंबर है। 6 लोकेशनस ने टोटल पूरे कैनेडा भर के, 2 कैलगरी च ने ते 4 इत्थे साडे GTA इलाके दे विच ने। कोई भी गलबात तुसी करनी होवे, जानकारी तुसी लैनी होवे किसी भी लोकेशन दे बाबत ते गिल स्वीट फैक्टरी दा हैड ऑफिस दा नंबर 905-799-2616 9057992616 ते उन्हां दे नाल गलबात करके जानकारी हासिल की जा सकती होंदी है। और एक बारी फिर तो थानू अज दे महान दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश दिवस नूं समर्पित नगर कीर्तन अज गुरद्वारा माल्टन तो जिहड़ी शुरुआत हो के रवानगी उत्थों हो चुकी होएगी आई बिलीव, ते समाप्ति भी गुरद्वारा साहिब इत्थे ही हो जानी है। और एक कह लो कि बड़ा छोटा रूट हुंदा है इस नगर कीर्तन दा। जरूर तुसीं शामिल हो के गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करनियां ने जी। और डिसिप्लिन दे विच रहिंदिआं होइआ वैसे तां कदी वी मेरा ख्याल है कि नगर कीर्तन नाल जिहड़ी संबंधित जिन्ने भी पिछले सालां दे दौरान अजिहे प्रोग्राम लीके गए ने और संगत ने बहुत साथ दित्ता हर वारी, चाहे वह नगर कीर्तन डाउनटाउन टोरोंटो दे विच होवे जां फिर वह माल्टन तो लैके रैक्सडेल गुरद्वारा साहिब तक जो विसाखी नूं समर्पित जिहड़ा नगर कीर्तन हुंदा खालसा दिवस नूं लैके, जां शहीदी जिहड़ा नगर कीर्तन हुंदा जी जिहड़ा कि पीटर रॉबर्टसन डिक्सी तो लैके सनपैक बॉलीवुड तक जोत प्रकाश गुरद्वारा साहिब तक हुंदा। कदे भी शायद मेरा ख्याल है कि अजिहा, क्योंकि जिन्नी संगत हुंदी है ते जिन्ना सेवादार जो काम करदे ने उहनां नूं सैल्यूट है जी। और बहुत मेहनत बहुत सेवा भावना दे नाल जिहड़े कारज है वह सिरे चढ़दे ने। और अज भी तुसीं जो अज दे नगर कीर्तन दे विच शामिल होना तो जरूर उम्मीद है कि तुसीं उस डिसिप्लिन नूं ध्यान दे विच रखदे होए सफाई का ध्यान रखते हुए शामिल उत्थे होवोगे कि बहुत सारे जिहड़े फूड स्टॉल्स है वह भी सेवादारां दे वल्लों लाए जांदे ने ते तुसीं जिथे खाणा पीणा आनंद लैणा है अज लंगर जिहड़े छकणे ने प्लस जिहड़ी सफाई का भी ध्यान रखना। और जदों जिहड़ी जे कुते कुताही हुंदी है तो मैं लगदा कि कार पार्किंग नूं लैके जरूर असीं कई बारी अणगहली वरतदे हाँ, सो ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਜੋ ਜੋ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ।

0: 32, 55, 80, 98.
1: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
2: ओ काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते, 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी, कॉल 9054502828, 905-450-2828।
3: मेरी बेटी की क्लास में 33 बच्चे हैं। वो बताती है कि किसी भी चीज की मकदार काफी नहीं है। तलवा से भरी हुई क्लास, शोर, इस सब बहुत ज्यादा भोजन महसूस होता है। इसकी वजह यह है कि डग फोर्ड ने 2018 से हमारे सरकारी स्कूलों के बजट में 6.5 बिलियन डॉलर की कटौती की है। हमारे बच्चे बेहतर सलूक के मुस्तैक हैं। हुकूमत से कहें हमारे बच्चों में सरमायाकारी करें, क्लास साइज दुरुस्त करें। एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन ऑफ ऑन्टेरियो की जानिब से एक पैगाम।
4: This is AM 530.

0: कहता है बाप से तेरी क्या औकात, पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं भाई का विश्वास, बहन पराई हो गई सारी खासम खास। मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, बापू को बोझ समझे पत्थर लगे गणेश। बचे कहां अब शेष है दया धर्म और ईमान, पत्थर के भगवान है पत्थर दिल के इंसान, पत्थर के भगवान है पत्थर दिल के इंसान। पत्थर को लगते हैं 56 भोग, मर जाते हैं फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। पहन मुखौटा धर्म का करते दिन भर पाप, भंडारे करते फिरे घर में भूखा बाप। वह रे आदमी वह रे इंसान, गजब तेरी दुनिया गजब तेरे ख्वाब।
1: लो भाई सच्चाई निचोड़ के मुरे धरती थोड़े टाइम अवेलेबल है जानकारी ली 416-677-0609। ऊपर वाले दुआ करना मेरे, फिर मिलेंगे। डेव टाला नु इजाजत दो, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ ब्यूटीफुल डे।

0: ओमकार कंटा सिंह रिपोर्टिंग सर।
1: सत श्रीकाल गंडा सिंह जी,
0: की हाल चाल है?
1: मैं बिल्कुल ठीक हाँ, तुसी सुनाओ।
0: बाजी आपा भी कायम हाँ।
1: और फिर अज किदा की गल सुनाउण आए हो?
0: देखो ये गल्लां ही जिहड़ियां मर्जी साहब तुहानू तंगी आ।
1: ओहो अज फेस स्टैंड ते
0: बस थोड़ा होर हो जा परे तार नंगी आ।
1: तुसी ये गल कित्थों सुन ली?
0: मैनूं ओह मुंडे ने सुनाई जिहड़ा तेरे नाल हुंदा सी किहड़ा
1: गुरप्रीत।
0: ओह कहिंदा भाजी नूं इदां क्यों? मैं कहिंदा
1: अच्छा मतलब ओहदियां गल्लां मन्नोगे हुण तुसी?
0: मैं गल पता कि मुंडा बीबा तूं ऐ बदनाम ना कर।
1: अच्छा
0: मैनूं ओहदी गल सुन के ना याद आ गया चुटकला।
1: केहड़ा चुटकला?
0: चुटकला बस डाक्टर तों मैनूं याद आ गया वी उहना मरीज गया डाक्टर को।
1: अच्छा
0: कहिंदा डाक्टर साहब मेरा ना पेट खराब आ।
1: ओहो फिर
0: कहिंदा वी की गल कुछ खा लिया गल? कहिंदा जी खादा तां कुछ नी बस जाके कलस्सी दा पी के उत्तों चाह पीती गई आ।
1: जेड़ा सोने दा रेट आ।
2: सोने दा रेट आ?
1: हां जी
2: सोने दा रेट रूट तक किथे रह गया हुण?
1: मतलब सोना इन्ना महंगा हो गया, इन्ना महंगा हो गया भी व्याहां दे विच गहने कित्थों बनाउणे आ?
2: मैं गहने कदे बनाउणे? गहने मैं तां उही तां कही जांदा
1: की
2: मैं कहा भी आ भला होवे जिन्ना बनाए आ। की बनाए उन्होंने?
1: की बनाए
2: आ? जिहड़े जाली बनाउंदे आ
1: आर्टिफिशियल जिहड़े। अच्छा जी
2: ओने दा बचाते साडे वाले।
1: अच्छा
2: 1400-1500 दा हाय सूट जा लै के खेड़ा चढ़ाओ।
1: तुसी नकली बनवाया
2: ते होर की करिए दसो?
1: असली क्यों नहीं?
2: असली है हद कर दी तू किदा नहीं?
1: की हो गया?
2: चार मेरे साले।
1: अच्छा
2: पहला जदों ब्याह कीता बड्डे साले दा ओदो सस मेरी ने पलनी वालियां बना दी।
1: अच्छा जी
2: ओदो बाद निके दा कीता फिर चीनी बना दी। ओदो निके दा कीता बापू दा कड़ा भी जांदा लगा।
1: अच्छा
2: ये ते मेरी अक्सी छाप हुण कहिंदे निके दा बना दी।
1: नहीं देखो
2: मेरे निके भाई दे फायदा की होया दसो मैनूं?
1: नहीं ओ तां मैं ठीक आ सहमत आ तुहाडी गल्ल, पर कितना किते असली सोने दा तां अपना ही रोब हुंदा।
2: नहीं असली सोने दा रोब कि पट पिया सोना जिहड़ा कन्नां नूं खावे भाजी 33,000 नूं तां सोना हो गया।
1: हां जी ये तां है। नहीं नाले पता की सोने दे होर वी बड़े नुकसान
2: ना। बाकी भाजी एक मिंट
1: हां जी
2: मेरे फोन करन दे एक मिंट।
1: केनू
2: बिंदर जूदर हेलो हाँ
1: जनाब
2: तेनू साड़िया क्या जी टाइम
1: जनाब तुसी रेडियो ते गाला निकाल सा
2: सॉरी
1: हाँ
2: तेनू क्या बंदे आंगू पचारिया करो तू की गल की तन तंगी की है तेरे लत्ता में क्या मैं तोड़ दूँगा तुम दसवां गल तेरे पैसे दे दांगे पैसे तेरे लाके पा चले हैं
1: जनाब
2: जेकर उससे साड़ी नाक कटी के फिर तू की कर देगा तेनू मैं बंदे आंगू दस दी गल भी जेड़ा तेनू सोना क्या टाइम ना पचा दी
1: गाना
2: गुना लाओ
1: लगी।

0: हां जी हरमन जी
1: अहे हाले तई कोई फर्क नहीं पिया
0: फर्क जे पै गया दिलां विच नी फेर तू रोवेंगी
1: मैं क्यों रोंगी
0: ए फर्क नी पैना चाहिदा फिर के दे कपड़े धोवेंगी
1: दिल दा कपड़ा ना की सबन
0: मैं ता रंग दी गल करदा भी भाई चंगा साबण वरत्या करो हाँ। माड़े साबण रंग उड़ जांदा
1: ओ जेड़ा गुरप्रीत संधा वालिया वरतदा छोकरा मारका ओनी वरतना
0: हां जी
1: अच्छा जी ए कपड़ियां दे रंग उड़े दा ही नतीजा कि अज इदा दा हो गया
0: हां जी
1: हां जी
0: हां जी
1: चलो मैं तुहानू फिर अज एक गल सुनानी आ
0: दसो
1: कहंदे कि जेड़ियां बादल सरकार दीआं नीतियां ना
0: बादल सरकार दीआं नीतियां पहिलां मैनूं इह दसो भी है किहड़ियां
1: चलो जेड़ियां भी आ
0: ना इदां थोड़ा हुंदा जेड़ियां किहड़ियां दा की मतलब है
1: देखो उहनां ने
0: समझाओ ना पहिलां
1: की समझावां
0: भई साडे पल्ले तां पाओ
1: की पाओ
0: भी किहड़ियां नीतियां ने
1: उहनां ने जो किया आ पहिलां उह गल तां सुण लां तूं
0: सुण लांगे पहिलां गल तां दसो नीति केड़ी है
1: मेनू नहीं पता
0: अच्छा
1: ठीक है
0: हाँ जी
1: उन्हां दी जिन्नियां भी नीतियां ने
0: जी
1: उन्हां दा प्रचार पता हुण कौन करूगा
0: कौन करू
1: सनी देओल
0: सनी लियोन
1: नहीं सनी देओल
0: अच्छा
1: अपना वो जड़ा नलके आला
0: धर्मेंद्र भाई दा मुंडा
1: वड्डे आला हां ते
0: यार वैसे मेनू पता लग गया भी सनी देओल कोलों क्यों मशहूरी करावनी है
1: क्यों
0: ओ इस करके कहंदे भी पंजाब च पानी दा थल्ले चली गई
1: अच्छा
0: नलके पानी कढ़दे नहीं नाले नलके पटा लांगे नाले प्रचार करा लेंगे
1: एक होर भी है लिस्ट च
0: ओदी लिस्ट दा फेसना हो पहला गाना सुनना ही नहीं तां मैं रो पणा जी

0: राम जी, मेरा बिजनेस नहीं है चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? देवता अकले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला। भाई स्पेशल पैकेज ने उन्हां कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।
0: मेनू याद आ गया।
2: शुक्र है, तू कोई बदाम बदूम खाया कर।
0: की भला
2: की
0: ए होई भी एक ना साडी लंडी मज भी हुंदी।
2: ले लो।
0: की होया?
2: मैं कंगणा दी गल कर रही।
0: तू कंगणा दी कादों गल करनी? कंगण पा ला तू, ले ले।
2: ओहो तू ही तो शुरू होया सी भी ओ कंगणा जड़ी रणौत वाली।
0: आहो ओहो फिल्म वाली।
2: हां
0: ओदी गल सुन ला।
2: सुना।
0: ओदा ना मैं अखबार च पढ़िया, कहंदी मेनू ना जेड़ा फिल्म दे विच हुंदा कैमरे वाला, जेड़ा लैटां वाले हुंदे आ, जेड़ा इक टोपी पा के रौला नी पाउंदा, कट दो वड दो।
2: ओह वड दो नी, ओह कट कहंदा हुंदा, डायरेक्टर हुंदा ओह।
0: है कट मेनू पता, अंग्रेजी स्कूल गया, कट नी हुंदा कटना वडना।
2: हाँ मतलब वो उन्ना सीन उथे मतलब खत्म, ओनू कहंदे कट। तू छड्ड ओह गल्लां, तू मेनू अगे गल दस।
0: ओह कहंदी भी मेनू ना बहुत वधिया लगदा ओह।
2: है
0: हाँ कहंदी जेड़ा टेक्निकल हुंदा ना काम, टेक्निकल ना।
2: ओ टेक्निकल हुंदा?
0: टेक्निकल
2: टेक्निकल
0: टेक।
2: अच्छा तुहाडा टेक्निकल हुंदा जो भी हुंदा, तू मेनू गल सुना।
0: कहंदी भी ओ ना मेनू बहुत ही नजारे वाला लगदा, कहंदी बहुत नजारा आउंदा ओहदे च।
2: आए हाय
0: पर मेनू ऐ नहीं सुन लगी
2: की
0: ओहदे वाल जे जिवें खड़े जे हुंदे जिवें करंटिया लगदा हुंदा। कहंदे ऐ तां नहीं मतलब लाइटमैन नूं कहंदी ओह वीर बन के बत्ती नूं हत्थ ला लैंदे। हांजी
2: तू पींदा खांदा तां नहीं?
0: मैं जी पीना भी हाँ, मैं खाना भी है जी।
2: की
0: पीना? मैं पानी है जी, चाह है जी, दुध है जी, जूस है जी, लस्सी है जी, और जेड़ी जी पीने वाली मिल जाए।
2: तू सवेरे की पी के आया मेनू ए दस।
0: सवेरे ता जी मैं मतलब जी पानी पीता जी, लस्सी पीती, चाह पीती, दुध पीता जी।
2: तेरा ढेडा टोया?
0: नहीं टाइम ना पीता जी, आया थोड़ा भी मतलब एदा थोड़ा।
2: मैं के शायद कट्ठा ही कहंदा होना।
0: नाले तोड़े वाली चीज नहीं पींदे जी, ओदा तूनू आदत है। मैं तो कई बार गया भी कुड़ियां नू चंगी नहीं लगदी, तू ना पिया कर।
2: केड़ी चीज?
0: ओही जेड़ी तू पीनी है।
2: मैं केड़ी पीनी है?
0: असी कद दसीए भाई।
2: दस दे
0: भाई, कोल्ड काफी पींदी है, इली चंगी नहीं है।
2: क्यों नहीं चंगी? इन्नी गुड हुंदी
0: है। काफी गुड हुंदी है, साडे पिंड जिन्ने व्याह हुंदे ओदे तत्ती करके दिंदे आ काफी। जे ठंडी दे देना, पिछे जे मेरे व्याह सी भूआ दे मुंडे दा, ओदे ठंडी कॉफी दे दी, मेरे फुफ्फड़ ने गलों फड़ लिया कॉफी वाले नूं।
2: पता की
0: कहंदा साला सवेर दियां तारां ला के ढूं ढूं कराई जांदा, कॉफी मंगी हुण ठंडी दे दी।
2: पता की चक्कर आ? तू ठंडी नहीं पींदा, ओदा ही नतीजा इह आ।
0: ते मैं फ्रिज रख के पी लिया कर, ताडी नूं भावें तूं मैं कॉफी दी बर्फ जमा के पा लिया कर, विच सासी की लैणा देना।
2: ठीक आ, मैं तां तैनूं नतीजा दस्या आ।
0: नतीजा तू मेरा नतीजा मेनू क्यों दसता? नतीजा आपे मेरे घर दे जाके स्कूलों पुछ लैणगे।
2: नाले
0: जदों मेरा नतीजा आउंदा हुंदा सी ना, फिर दो दिन मैं नहीं घरे आउंदा हुंदा सी।
2: क्यों?
0: ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ।
2: ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੀ ਸੁਣਨੀ ਤੂੰ?
0: ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨੂੰ? ਤੂੰ ਗੱਡੇ ਦੇ ਲੱਦੀ ਆ।
2: ਹੁਣ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ?
0: ਗਾਉਣਾ?
2: ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ।
0: ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਕੌਣ ਸੁਣਾਉ ਫਿਰ?
2: ਗਾਉਣਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।
0: ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ।
2: ਕੀ
0: ਐ ਨੀ ਹੁੰਦਾ?
2: ਏਦਾਂ ਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੂਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗਾਣਾ ਲੱਗੂਗਾ।
0: ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਇਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ।
2: ਓ ਨਹੀਂ
0: ਕਿੰਨਾ ਮੁਕਾਉਣੀ ਆ ਗੱਲ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣੀ ਆ ਤੂੰ?
2: ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੂਣੇ ਇੱਟ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਵਗਾਤੀ ਮਾਰਾਂ ਸਿਰ।
0: ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜੂ।
2: ਕਿਉਂ?
0: ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਗੇਟ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟ ਦੋ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਵੱਜਦੀ ਆ।
2: ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ,
0: ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਟ ਮਾਰੇਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट।